आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से आई बारात बाजे गाजे से आई बारात बाजे गाजे से।

तेरी मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की याद है, तू क्यों उदास है,

प्यारी प्यारी मगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए मुखापत्ति

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाए

0: बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है, आज राम जन्म की बधाई है, बधाई है,
1: भर भर के कनक थाल, भर भर के

0: राम के मन में सीता का ध्यान, प्राणों की आरती, प्राणों की आरती जलाई है जलाई है।
1: राम जन्म की बधाई है बधाई है। राम जन्म की बधाई।

कहीं पाखन में इकरार हो गया पिया तेरा मेरा ओ पिया तेरा मेरा बस चुपके ही चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा।

आँखों आँखों में इकरार हो गया पिया तेरा मेरा ओ पिया तेरा मेरा बस चुपके ही चुपके से प्यार हो गया पिया तेरा मेरा।

0: घन चक्कर सड़ियल छप्पर सुन ले कहना मेरा, तू कौड़ी का तीन यहाँ पर नहीं ठिकाना तेरा। चाहे लागे तेरे हाय चाहे जाम चली रे जा, चाहे लागे तेरे हाय चाहे जाम चली रे जा।
1: मैं नहीं हूँ ऐसा वैसा,
0: मैं सब जानू तू कैसा।
1: तू अभी अभी है आई, तू क्या जाने मेरी बड़ाई।
0: तेरी सूरत बंदर जैसी, तेरी नाक छुंदर जैसी।
1: मानो सतिये मेरी बानी, भरे इंद्राणी घर में पानी।
0: बुद्धू राजा बंद करो ये गप्पों की फुंसकी, गाल बजाने से न होएगी बात प्रेम की पक्की। चाहे लागे

0: देवलोक में तुझको लाया और मिट्टी से रतन बनाया।
1: ना चाहूँ मैं स्वर्ग की माया, भली मुझे मिट्टी की खाया।
0: न सुने तू मेरा कहना, हाथ मले पछताए। हर जग में बुरी कही जाती है, किसी बुरी की हाय।
1: चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रह जाए। चाहे लागे तेरी हाय, चाहे जान चली रह जाए।
0: मैं इंद्र कुमार भगाऊं और इंद्राणी तुझे बनाऊं।
1: अच्छा,
0: हाँ तेरे कई इशारे पर इंद्राणी तुझे बनाऊं।
1: जो बात ये सच है तेरे, मिल गई जोड़ी तेरे मेरे।
0: तू नदी की चंचल धारा, जिसमें बीते जीवन तारा।
1: ओ लहरों के प्रेमी राजा, ओ लहरों के प्रेमी राजा, जा लहरों के संग।
0: करव मिलन मत भंग, चाहे लागे तेरी हार, किसा है जवान चली रे जवान।

0: धन नगरी की सुन लो राम कहानी, बाबा सुन लो राम कहानी,
1: धनवानों की धन नगरी की सुन लो राम कहानी, बाबा सुन लो राम कहानी।
0: रुपया उनका राजा, अधनी उनकी रानी, सुवर्णी सुवर्णी दो लड़कियां मनमानी। बिल्डिंग बंगले बनवाने की बेचारों को और किराएदारों से पगड़ी लेने की बैंक बैलेंस बढ़ाने को वो करे खून का पानी। हर पास ना अपने बिल्डिंग बंगला सड़कों पर हम सोचे, खाते जो भगवान खिलाए भोजन को नहीं रोते। राम नाम है बैंक हमारा जिसको न आए हानि,
1: धनवानों की धन नगरी की सुन लो राम कहानी, बाबा सुन लो राम कहानी।

0: जाए दर दर। अरे उनको झट फुहारा जाए, जाना पड़े जो मंदिर।
1: अरे मोटर मंदिर तो कहा लिया तो उनको अच्छा सी ले जाओ।
2: हम कमार भरे ऑफिस वाला।
1: अरे ना के नाम
0: भूल जाए परमेश्वर को नहीं भूले रकम बचानी। अरे टैक्स टैक्स की फिक्र नफा था, टैक्स टैक्स की फिक्र नफा था, पास न अपने हमारी चिमटा झोली धन है अपना बस्तर तन की चमड़ी। पास हमारे आए जो चिंता मर जाए उसकी नानी। अरे सुख ही सुख है, सुख ही सुख

0: रखे जादू राम रहेंगे यही है मन में खानी
1: राम जन्मदी भगवान के नगरी के सुनो राम कहानी बाबा सुनो राम कहानी भगवान के नगरी के सुनो राम कहानी बाबा सुनो राम कहानी भैया उनका राजा
0: रुपया किसका भैया अठन्नी किसकी साथी चौवन्नी दो बन्नी जो आती है जो जाती नहर किस एक जगह ये

बियारे तो बियारे तेरा छोरा हाँ तेरा छोरा बीच बजरिया छेड़ करे मत बीच बजरिया छेड़े धोबियारे तेरा छोरा हाँ तेरा छोरा।

0: हेमोस
1: क्यों छोरी रे छोरी रे छोरी छोरी रे
0: बड़ा शरीफ है मेरा छोरा बड़ा शरीफ है मेरा छोरा ओ छोरी छोरी जूठ के बोले ओ छोरी जूठ के बोले सुंदर देख के मोरे ललन को क्यों तेरा मनवा डोले ओ छोरी क्यों

बड़ा हिट है, बड़ा हिट है ओ तेरा छोरा। बड़ा हिट है, बड़ा हिट है ओ तेरा छोरा। बीच नगरिया घेरे, बीच नगरिया घेरे, धोबिया रे तेरा छोरा ओ तेरा छोरा।

0: फिरे है पीछे मोरे, फिरे है पीछे मोरे। धोबिया रे तेरा छोरा, कौन तेरा छोरा?
1: सुखिया
0: के छोरे से छोरी, सुखिया के छोरे से छोरी, कहे करे तू लड़ाई, माफी मांग ले वो छोरी।